फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

0: हमारी सभी सुन वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और अदा बरसो। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तय दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुन वालों आज बीफे बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है, 20 तारीख अगस्त का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से।
1: भगवान का घर है
0: घर की ओर देखा जाए 7:00 प्रोग्राम में 3 मिनट व्यतीत हो चुका है। 3 मिनट ओवर स्टूडियो टाइट हो चुका है। सभी इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-66-11। डॉक्टर का कंटूर का

daar gaan nummer op Radio SBSK, app nummer 24 uur per dag, aap sabhi ke liye bereikbaar hota hai. Wij sabhi Radio SBSK website ki zariye, aap mail bhi kar sakte hai, ya to Radio SBSK app par bhi aap app kar sakte hai. उसी वेबसाइट की जरिए दुनिया की कोने कोने तक हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी आप सुन सकते हैं। सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए और हॉलैंड देश के बीच में मिडन नीदरलैंड में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में हमारा प्रोग्राम डीएबे प्लस रेडियो की जरिए भी आप सुन सकते हैं। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार रबीन। यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज बृहस्पतिवार का दिन, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं, हम देख रहे हैं स्टूडियो के अंदर जोड़ तोड़ से हमारे सुनने वालों रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है और ऐप कर रहे हैं। सभी को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। सभी जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में अब की बार सुंदर सा भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलते हैं सुंदर सा शिव जी का भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-6611 है। प्रोग्राम भजन यात्रा में हम आपको ले चलेंगे आज की प्रोग्राम में हमारी एक सुनने वालों की निवेदन पर, ऐप पर निवेदन किया हरिओम शरण जी की आवाज में एक सुंदर भजन पेश करने के लिए। तो चले ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है हरिओम शरण जी की आवाज।

सुंदर भजन शैलेंद्र की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अब कई बार भजन जो प्रोग्राम में पेश होगा और वो भी अशोक घरे की आवाज में रफी साहब का एक खास गाया हुआ भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश होगा अशोक घरे की आवाज में।

सुंदर सा भजन प्रोग्राम में आशु घर की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में गैनेन्द्र शर्मा जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है।

सभी सुनने वालों जो स्टूडियो की ओर तार किया है, ऐप किया है, सभी को धन्यवाद और शुभ दिन पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। बहुत से सुनने वालों है जो रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी तार किया है। चले प्रोग्राम में हरि हरन की आवाज में एक सुंदर भजन, शिव जी का भजन बस पेश किया जा रहा है और इस भजन के बाद आरती भजन पेश किया जाएगी।

सुंदर सा भजन हरि हरन के आवास में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पीश की गए। सुनने वालों आज बीफ बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं, सभी सुनने वालों जो देश विदेश में प्रोग्राम को सुनते हैं, आप लोगों को भी एक शुभ दिन रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से बस पेश किया जा रहा है। चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, यानी कि हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से भी आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन। सभी सुनने वालों जो देश विदेश में प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए, और खासतौर पर सभी जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये

0: अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में ये सुंदर सा आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। यहाँ तक प्रोग्राम भजन यात्रा पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। कल शुक्रवार है, कल सुबह 7 बजे से फिर प्रोग्राम भजन यात्रा आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो रेडियो SBS की जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह, शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt.

सात बजकर प्रोग्राम में चार मिनट व्यतीत हो चुका है। सुन बलो रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आज भी फे बृहस्पति

सुना सरगम की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, ना जाने क्या हो गया है बस तुझे देखकर। सुन वालों, आपको मालूम होना चाहिए कि आने वाले महीना जबरदस्त कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं आपास लाइव आमस्टरडम शहर के अंदर में। कुमार सानू और अनुराधा पोटवल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं। अपना टिकट जब ये आपने नहीं खरीदा है, जल्द से जल्द अपना टिकट को खरीदिए। आई स्ट्रीम टिकट स्पिन रागा इवेंट्स ला रहा है ये काफी बड़ा कॉन्सर्ट आवास लाइव थिएटर आमस्टरडम शहर में। एक थिएटर जिसमें बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते रहते हैं, उसी थिएटर में ये कॉन्सर्ट होने वाले हैं कुमार सानू और खासतौर पर अनुराधा पोटवल का। सभी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है रागा इवेंट्स वेबसाइट पर, और उसके साथ आपको खबर किया जा रहा है कि अपना टिकट जल्द से जल्द आप खरीदिए, और वो भी i-tickets.com वेबसाइट पर जाकर। हजारों हजारों लोग अपना टिकट को खरीद चुके हैं। कुमार सानू टाइगर ऑफ इंडिया, कुमार सानू, सानू जी की आवाज में।

0: में गानों बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में
1: तुमसे है प्यार।
0: रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS इंटरनल उसी वेबसाइट के जरिए हमारा ये प्रोग्राम अपना मोबाइल के जरिए सुन सकते हैं। बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो बिस्तर में लेटे लेटे प्रोग्राम को भी सुनते हैं और वो भी अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन के जरिए। आपको मालूम होना चाहिए DAB प्लस रेडियो के जरिए भी आप प्रोग्राम को सुन सकते हैं। रेडियो SBS का मिडन नीदरलैंड और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में अपना मोटर कार में DAB रेडियो रेडियो फॉर द टुकोम्स कुछ सालों के बाद FM नहीं रहेंगे दान खां वाले मार DAB खबरें जहां वाले माफिया DAB लॉस्टर। और इन दिनों हर एक दुकान में सस्ती दामों में आप DAB रेडियो जाकर खरीद सकते हैं। DAB रेडियो के जरिए प्रोग्राम आप सुनेंगे, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। एंड रेडियो दूदत ऑल टाइप इंटरनेट में कभी कभी ये होता है जब ही आपके इंटरनेट काम नहीं करेंगे तो आप रेडियो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन DAB रेडियो के जरिए जिस तरह से FM के जरिए हमेशा सुनाई देता है वो तो कुछ लोगों को मालूम है जो लोग DAB रेडियो के जरिए प्रोग्राम को सुनते हैं फॉलो कर रहे हैं। 12:09 अनुराधा पोर्टवाल की आवाज में गाना पेश होगा, साथ में होगा द लेट पंकज उदास। अनुराधा पोर्टवाल और पंकज उदास की आवाज में गाना सुनते ही रहना। एल्बम से निकाला जा रहा है और आपको मालूम होना चाहिए कुमार सानू के साथ अनुराधा पोर्टवाल भी रहेंगे सोमवार 6 सितंबर आफास लाइव थिएटर आम्स्टरडम में।

एक बड़ी प्यार भरी गाना पेश किया जा रहा है। मुझे मालूम है गाना आपको जरूर और बेहद पसंद आएंगे। और इस गाना को भी आप जरूर गुनगुनाएंगे। अनुराधा पोटवाल एंड पंकज उदास।

रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गए अनुराधा पोटवाल और पंकज उदास की आवाज में भी आपने सुना असर उम्मीद है गाना सुनकर और काफी पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए अभी तकरीबन 9 बजे से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। चलिए प्रोग्राम में अब की बार कुमार सानू और अलका जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। गाना का बोल है कैसे कहूं रेडियो SBS The best Bollywood hits लेकर के और मीरदान एनन फिर तरियार हर एक को मालूम है काफी सालों से रेडियो SBS का प्रोग्राम

नाम धोखा। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम होगा धूप। हरिहरन और श्रेया जी की आवाज में अबकी बार गाना पेश किया जा रहा है, हरिहरन एंड श्रेया जी की आवाज में। फिल्म का नाम धूप, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

हरी हरन और शरिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तुलसी कुमार और हिमेश हरी शबिया प्रोग्राम में होगा।

हिमेश रेशमिया एंड तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए कुमार सानू और अलका की ओर हम आप भूले चलते हैं। अब की बार गाना जो

की ही सीताराम रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 9:00 प्रोग्राम में 4 मिनट व्यतीत हो चुका है। आज भी बृहस्पतिवार का दिन 20 अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। यहां से प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो चले पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की आवाज में।

इसकी गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में 9:09 वेटेड हो चुका है। चलिए फिल्म कश्मीर की कली, उसी फिल्म का एक गाना मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में, दीवाना हुआ बादल कश्मीर की कली, उसी फिल्म का।

दीवाना हुआ बादल, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई। कश्मीर की काली फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई। स्टूडियो की ओर काफी सुनने वालों तार कर रहे हैं, कुछ बातें भी होते हैं। आप सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। बाहर का मौसम की ओर देखा जाए, खूबसूरत सुहाना मौसम है, धूप ही धूप का मौसम है। फिर भी मौसमी समाचार से खबर मिलते है कि कहीं कहीं हॉलैंड देश के अंदर बारिश का मौसम भी होगा। अच्छा, मेरा टेम्परेचर तकरीबन 22 डिग्री होने वाले है, 20 डिग्री सेल्सियस। सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। सुमन कल्याणपुर प्रोग्राम में।

किशोर कुमार या कहिए सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई कन कन में भगवान फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गाना बस पेश की गई। चले प्रोग्राम में अबकी बार किशोर कुमार और लता जी की आवाज में, किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

सब आज ही ये फिल्म का गीत पेश की गई किशोर कुमार और लता जी की आवाज में, गाना भी आपने सुना। चले आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में फिल्म समाज को बदल डालो, आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी।

द माइटी मुकेश के आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किए गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हाजिर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। माइटी मुकेश की आवाज में फिल्म का नाम था सरस्वती चंद्र, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए कि कल 21 तारीख अगस्त है और कल से शुरू होगा पूरा के पूरा वीकेंड भर मिलन समर फेस्टिवल, मिलन समर फेस्टिवल और कल लाइव पोडियम पर रहेंगे, स्टेज पर रहेंगे त्रिनिदाद का वही मशहूर गाने वाला अपना फुल बैंड के साथ, दिले नादान बैंड के साथ रेमोन रामनारायण रहेंगे और वो भी कल शुक्रवार मिलन समर फेस्टिवल में। टिकट के लिए आप जाइए milansummerfestival.nl।

Raymond Ramnarayan, Milan Summer Festival में तो मुलाकात होगा, खूब मजा लेंगे मिलन समर फेस्टिवल। और टिकट के लिए जरूर और जरूर आप दरियाब कीजिए मिलन समर फेस्टिवल .nl पर। चलिए प्रोग्राम में गाना जो पेश होगा मोहम्मद रफी एंड लता, कोयल बोले दुनिया डोले, सरगम फिल्म का नाम।

0: सरगम फिल्म का गीत पेश किए गए मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना अभी आपने सुना। गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ रोजाना ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। आज भी फिर बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है, 20 तारीख अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और हमेशा की तरह आज भी देश विदेश में भी बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है ठीक 12 का वक्त 12 बजे और आज शाम में 6 बजे मृत्यु समाचार आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। आज 12 बजे और आज शाम 6 बजे प्रोग्राम में मृत्यु समाचार दुख की खबर जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। एक सवाल मैं करूं,
1: एक सवाल

एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। ससुराल फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में यशुदास की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

Een hele mooie nummer, gezongen door Jesu Das. Film gedaan, Saban Kuani door. Jesu Das ki avans mein ye gana, aaj ki program mein pesh ki gaye. हमारी एक सुनने वालों है जो Den Haag शहर के अंदर में काम पर यानी कि जहां पर नौकरी कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और कहा कि ये ऐप पर कहा है, इस वक्त कॉफी पाउस है तो मौका मिला है रेडियो SBS का पुरानी गाने सुनने के लिए, शुक्रिया। और एक सौ से वैरक्स और कोशिश कीजिए अगर मौका मिले रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनने के लिए। सीता और गीता फिल्म का नाम, आशा भोसले एंड किशोर कुमार।

0: गाना कबूल है ओ साथी चल सीता और गीता फिल्म का नाम हेमा मालिनी का डुप्लीकेट मूवी है। साथ में द लेट सुपरस्टार धर्मेंद्र भी काम किया है इसी फिल्म में।
1: के साथ साथ
2: अरे रे रे।
1: घटा के संग संग
2: संभालना
1: हवा के साथ साथ घटा के संग संग।

0: खूबसूरत।
1: रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई। शंकर हुसैन फिल्म का नाम था, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में। चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी एक बार फिर से प्रोग्राम में होगा, साथ में लता मंगेशकर। सोन ऑफ इंडिया फिल्म का नाम, 1962 का फिल्म, 1963 का फिल्म। दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है।

तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई फिल्म सॉन ऑफ इंडिया, उसी फिल्म का गाना बस अभी आपने सुना। सुन वालों, एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है, ठीक 12 बजे और आज शाम 6 बजे प्रोग्राम में मृत्यु समाचार और एक शोक समाचार आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। रेडियो SBS का प्रोग्राम रोजाना हजारों हजारों सुनने वालों बस सुनते हैं, तो रेडियो SBS भी आपका बेस्ट चॉइस होते हैं जब भी आपको खबरें देना है, रिक्लाम देना है। सस्ती दामों में आपकी तमाम खबरें बस पेश किया जा रहा है इसी रेडियो स्टेशन के जरिए, एक इन्फॉर्मेशन मेल द्वारा और रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी आप ले सकते हैं। और 24/7 हमारा कंटोर का टेलीफोन नंबर भी बड़ा एक बार होता है 032-65-65-60। सुनने वालों, आने वाले शुक्रवार 28 अगस्त रक्षाबंधन का दिन है, तो मुस्कुराता दुकान के पास कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 देनहाग शहर के अंदर में राखी जो है जाकर आप 1 यूरो में आप खरीद सकते हैं। सस्ती दामों में आपको यहां पर दिया जा रहा है राखी 1 यूरो में, और वो भी मुस्कुराता के पास देनहाग शहर के अंदर में कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 पर। और आपको भी खबर किया जा रहा है कुमार सानू और अनुराधा पोटवल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले है सोंदाग 6 सितंबर आफास लाइव आम्स्टरडम शहर के अंदर में। इसके बारे में अभी प्रोग्राम में और भी हम आपको खबर करेंगे। मोहम्मद रफी एंड लता

मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों घड़ी की ओर देखा जाए 12:04 स्टूडियो टाइट हो चुका है, 12 मिनट बाकी है सुबह साढ़े 10 बजने में। यूट्रेक से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। अब की बार गाना जो पेश होगा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, फिल्म का नाम प्रोफेसर। एक बार फिर से मोहम्मद रफी प्रोग्राम में गाना जो पेश किया जा रहा है फिल्म प्रोफेसर से आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की सर ये फिल्म प्रोफेसर, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है और मालूम भी होंगे, सोमवार रविवार 6 तारीख सितंबर कुमार सानू और अनुराधा पोटवल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं आमस्टरडम शहर में और वो भी आफास लाइव थिएटर में। एक बड़ी ही खूबसूरत थिएटर है जिसमें तरह तरह बड़े बड़े कॉन्सर्ट पेश होते रहते हैं। उसी थिएटर में आफास लाइव में आमस्टरडम शहर के अंदर में कुमार सानू और अनुराधा पोटवल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं। हजारों हजारों लोग अपना टिकट को खरीद चुके हैं, आपने नहीं खरीदा है तो जल्द कीजिए टिकट, आप जाकर खुद देखिए कि टिकट कितना बिक चुका है और कितना बाकी रह गया है। बहुत कम टिकट बाकी रह गया है और इन दिनों बहुत से लोग जल्द से जल्द अपना टिकट को खरीद रहे हैं और जाकर 6 तारीख सितंबर कुमार सानू और अनुराधा पोटवल का लाइव कॉन्सर्ट देखेंगे आफास लाइव थिएटर आमस्टरडम में। अपना टिकट आप जाकर खरीदिए i-tickets.com i-tickets.com वेबसाइट पर जाकर अपना टिकट को आप खरीद सकते हैं और ये कॉन्सर्ट ला रहा है, पेश कर रहे हैं रागा इवेंट्स का वेबसाइट पर जरूर आप जाइए सभी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो i-tickets.com वेबसाइट होता है, उसी वेबसाइट पर आप जाइए और अभी और इसी वक्त अपना टिकट को आप खरीदिए। हजारों हजारों लोग अपना टिकट को खरीद चुके हैं, जाकर इसी वेबसाइट पर खुद देखिए i-tickets.com वेबसाइट पर कि कितनी लोग अपना टिकट खरीद चुके हैं। थोड़ी से टिकट बाकी रह गया है, जल्द कीजिए वरना बाद में आप सुनेंगे आपकी दोस्तों सहेलियों जाकर कॉन्सर्ट को देखेंगे तो आप भी बड़ी अफसोस करेंगे कि आपने टिकट नहीं खरीदा है, जबकि ये टिकट सबके सब बिक जाएंगे। तो मुलाकात होगा आफास लाइव में, जहां पर मिलकर हम सभी देखेंगे कुमार सानू एंड अनुराधा पोटवल का लाइव कॉन्सर्ट। और आप तो जानते हैं कुमार सानू काफी नई फिल्म में गाना गाए हैं, लेकिन किशोर कुमार के गाने जो है बड़ी खूब भी गाते हैं और खासतौर पर अनुराधा पोटवल जो भजन्स के साथ लता जी के गाने भी बहुत खूब गाते हैं। तो ये सब के सब हम सब मिलकर सुनेंगे और देखेंगे आफास लाइव आमस्टरडम शहर के अंदर में, जहां पर सोमवार 6 सितंबर कुमार सानू और अनुराधा पोटवल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होगा।

सर है 10:01 वेटेड हो चुका है और रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, जिस तरह से आज के प्रोग्राम में हमने आपको खबर किया, फ्राइडे 28 अगस्त, शुक्रवार 28 अगस्त रक्षा बंधन का दिन है। राखी सस्ती दामों में आप जाकर खरीद सकते हैं, मुस्कुराता दुकान के पास देनहाग शहर के अंदर में। 1 यूरो में आपको रक्षाबंधन यानी कि राखी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, कार्ल रोस्ट्राद नंबर 4 पर। तो चले आज की प्रोग्राम में आने वाले रक्षाबंधन के मौके पर एक गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। फिल्म राखी, उसी फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है आने वाले रक्षाबंधन के मौके पर, अभी से ये गाना।

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म राखी का गीत पेश की गए। अभी से यह खास गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में आने वाली रक्षाबंधन के मौके पर पेश की गए। आंसरों मीठे सुनकर और काफी पसंद किया है। सुनने वालों ऐप पर यही सवाल किया है, कहां पर हम टिकट को खरीद सकते हैं? कुमार सानू और अनुराधा पोटवल का कॉन्सर्ट के लिए iStreamTickets.com वेबसाइट होता है, जहां पर आप जाकर देख सकते हैं कितनी टिकट बाकी रह गया है और कितनी लोग अपना टिकट को खरीद चुके हैं। iStreamTickets.com जिन लोग को मालूम नहीं है उसी वेबसाइट पर जाकर अपना टिकट को खरीद सकते हैं आप। मोहम्मद रफी एनाशा एक प्यार भरी गाना, खासतौर पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का एक्टिंग किया हुआ गाना है। फिल्म प्रोफेसर प्यारे लाल उसी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है। धूप निकला हुआ है, बाहर की ओर हम देखते हैं, मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम है और ये खूबसूरत गाना रेडियो SBS पर।

पर श्री मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म प्रोफेसर प्यारे लाल, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सुनने वालों हर एक इंफॉर्मेशन जो है शो जो आ रहा है, कॉन्सर्ट जो आ रहा है कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल का, या तो मिलन समर फेस्टिवल के बारे में, या तो मुस्कुराता दुकान के बारे में, और भी तरह तरह की इंफॉर्मेशन भी आपको दिया जा रहा है हमारा फेसबुक पर और रेडियो एसबीएस का टिकटॉक पर, रेडियो एसबीएस का टिकटॉक पर और हमारा फेसबुक पर तरह तरह की इंफॉर्मेशन भी आपको दिया जा रहा है। सुनने वालों भी ऐप पर कॉम्प्लीमेंट्स दिया है कि हमारा प्रोग्राम हॉलैंड देश के बाहर साफ और सुंदर आवाज में, अच्छी क्वालिटी साउंड में सुनाई देता है। खासतौर पर कुछ देर पहले एक ऐप हमारे पास अंदर आया है, बीजिंग से, वहां पर सुनने वालों भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, शंघाई में भी सुनते हैं। और खबर किया है कि रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम अच्छी आवाज में, अच्छी साउंड में सुनाई देता है, हेल एरख उस्कोन सुनाई देता है। और ग्रांड कनारिया में भी सुनने वालों इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं, सभी जहां जहां पर भी हॉलैंड देश के बाहर प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, सभी को वेलकम और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। एक गाना मुकेश और लता जी के आवाज में पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम कभी कभी है। एक सुनने वालों जो इस गाना को सुनना चाहते हैं

द माइटी मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। असर उम्मीद है आप सभी सुनने वालों गाना सुना और काफी पसंद किया। रेडियो एसबीएस की सर ये जो पेश की गई पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने पर आ रहा है। काफी सुनने वालों भी तार द्वारा और ऐप पर भी सवाल किया है। हाय नार मिलन इन देन हाफ, हाँ जरूर मुलाकात होगा मिलन समर फेस्टिवल में जो कल शुरू होगा। कल शुक्रवार रहेंगे, आने वाले शनिवार और आने वाले रविवार सोमवार इस एर फ्यूरवेरक यानी कि अफ्सलाइटिंग होगा मेट फ्यूरवेरक। और कल जबकि शुक्रवार है तो कल लाइव रहेंगे पोडियम पर रेमोन राम नारायण अपना फुल बैंड लेकर के, म्यूजिक ग्रुप डीले नादान लेकर के। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, मैंने तुझसे किया है प्यार ओ मेरी महबूबा, मरहूम मोहम्मद रफी।

शेरों की बादशाह और संगीत का फरिश्ता मरहूम मोहम्मद रफी। सुनवालों, पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे एक आखिरी आखिरी गाना की ओर। कल शुक्रवार है, मत भूलना, कल सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक फिर से गर्मा गर्म मीठा मीठा कॉफी या तो मीठा मीठा चाय के साथ मीठा मीठा पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम हम पेश करने वाले हैं। तो कल फिर जरूर आप सुनते ही रहना। वैसे आज दोपहर में 2 बजे से लेकर के और 3 बजे तक पुरानी नगमें भी पेश किया जाएगी हमारा आखिरी घंटे का प्रोग्राम में। तो चले पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी गाना किशोर एंड आशा, तुम मिले प्यार से।

0: मिले प्यार से किशोर कुमार और आशा जी के आवाज में ये गाना पेश की गई है। आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम का ये आखिरी गाना था जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। सभी सुनने वालों जो ऐप किया रेडियो SBS का ऐप पर और ऐप द्वारा भी तार किया है, स्टूडियो का टेलीफोन पर तार किया है, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। आज की प्रोग्राम में काफी सुनने वालों बस तार किया, कुछ बातें हुए, हंसी बसा तो काफी हुए तार पर। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी के तार के लिए कि आप सभी हमारा साथ दिया है पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में। कल 9 बजे से फिर आप सुनते ही रहना पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो पेश किया जाएगी।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
3: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
4: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
2: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
3: 6th of September, अनफॉरगेटेबल 90s।
4: शो आपके लिए ला रहे हैं Raga Events from Holland.
3: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
0: Raga Events proudly presents Unforgettable 90s Live in Concert, The Tiger of

अनु और अलका जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना पेश होगा सोनू निगम और अलका जी की आवाज में, फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी।

रेडियो SBS की जरिए फिल्म हसीना मान जाएगी, उसी फिल्म का ये गाना भी इसकी गई सोनू निगम एंड अलका जी की आवाज में। गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार कुमार सानू और खास तौर पर साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

हेट स्टोरी नंबर दो उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में आपकी बार एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है सुनिधि चौहान की आवाज में।

सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में गाना जो अपनी बार प्रोग्राम में पेश होगा, अलका याग्निक एंड बाबू सुप्रियो की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

माया और बाबू सुप्रियो की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कुमार सानू जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है, कुमार सानू और अलका जी की आवाज में। और फिल्म का नाम

सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। हाउटन शहर से समस्त दुखित परिवार महादेव मिसिर और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। दोनदाह 13 अगस्त 72 साल 72 साल की आयु में पत्नी एल्फी के पति, 3 बेटा और 1 बेटी किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा के पिता, 3 पतो और 1 दामाद मिरांडा, लिंसी, सकीता और राम के ससुर, 1 पोतीन और 2 पोता जैडा, जैनाइडो, रोशन और नेलन के आजाम। हाउटन स्केख कैंप नंबर 5 का रहने वाला चंदर दत्त महादेव मिसिर के मृत्यु हो गए है, जो सूरीनाम पारामारिबो अबेनी स्ट्रात नंबर 3 के निवासी था। अर्थी फ्राइडाग 21 augustus smiddags vanaf 4 uur crematorium Daalwijk in de grote aula Florida Dreef nummer 7 Utrecht Overvecht शहर में दा क्रिया किया जाएगा। सुन वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानी भूटी पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है। सुन वालों, यहाँ से रेडियो SBS का प्रोग्राम में एक शोक समाचार सुनने के लिए आप ध्यान दीजिए। बृहस्पतिवार 13 अगस्त डोंदरदाग 13 अगस्त 72 साल 72 साल की आयु में हाउटन स्केख कैंप नंबर 5 का रहने वाला चंदर दत्त महादेव मिसिर के मृत्यु हो गए हैं, जो सूरीनाम पारामारिबो अबेनी स्ट्रात नंबर 3 के निवासी था। अर्थी फ्राइडाग 21 अगस्त स्मिडाग्स फना 4 uur क्रेमेटोरियम डालवैक ग्रोते औला में फ्लोरिडा ड्राइव नंबर 7 यूट्रेख ओवरवेक्ट में दा क्रिया किया जाएगा। पत्नी एल्फी अपने पति, 3 बेटा और 1 बेटी किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा अपने पिता, 3 पतो और 1 दामाद मिरांडा, लिंसी, सकीता और राम अपने ससुर, 1 पोतीन और 2 पोता जैडा, जनाइरो, रोशन और नेलन अपने आजा को बहुत याद करते हुए और भगवान से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये गाना बस पेश कर रहे हैं।

Brehesbediwaar 13 tarich August, donderdag 13 augustus. Behetterzaal 72, zaal Kiajumbe. Houten, Schechkamp, nummer 5, Rehnevala. Chandardat Mahadev Misirke, Mrityu, Hugeyehe. Jo Suriname, Paramaribo, Abenistraat, nummer 10, Kenivasita. Arte, vrijdag 21 augustus, smiddags vanaf 4 uur, Crematorium Daalwijk, Grote Aula. Florida Dreef, nummer Saat, Utrecht, Overvecht mee, Da Kriya Kia Jaiga. Patni, Elfi, Apni Pati, Tien Beta, Aurek Beti, Kishan, Vikas, Amres, Aur Karishma, Apni Pita, Tien Patu, Aur Ek Damat, Miranda, Lindsay, Sakita, Aur Ram, Apni Sasur, Ek Potin, Aur Do Pota, Jaida, Janairo, Roshan, Aur Nailan, Apni Aja, Ko Bahut Yad Karte Hu. और भगवान से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए हैं। इसी तरह से रेडियो SBS की सरिये बस प्रोग्राम में एक मृत्यु समाचार और एक शोक समाचार अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश

0: सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में हिमेश रेशमिया एंड श्रेया प्रोग्राम में।
1: ओ

सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्रेया घोषाल और शान की आवाज में। ये गाना जो पेश किया जा रहा है,

रेडियो SBS की जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अदनान सामी और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की सर ये उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज में पेश किया जा रहा है

रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में विजय प्रकाश और गायत्री गंजवाला के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अतीफ असलम।

जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार अलका एंड विनोद राठौर की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और हम अबकी बार आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम गैम्बलर। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है

गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की सरिये जो पेश की गई द मूवी गेम।

शान की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम गेम। फिल्म गेम के बाद हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम गैंगस्टर।

प्रोग्राम में कुमार सानू एन अनुराधा पोटवल के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। कुमार सानू और अनुराधा पोटवल

रेडियो SBS का प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए, वो भी रेडियो SBS.NL वेबसाइट की जरिए। चले प्रोग्राम में विजय प्रकाश एंड शरिया जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: के लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

मुझको के आवाज में फिल्म दीवाना का गीत पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में लता जी की आवाज में फिल्म दो बदन का ये गाना पेश किया जा रहा है।

हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था फैशन। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा।

पांच में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था प्रेम कहानी। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं पुरानी नख में, आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में चले मिलकर सुनते हैं ये गाना फिल्म प्रोफेसर

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज की प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं, फिल्म का नाम है कुर्बानी, उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है।

सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए है। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आर जे अंशली करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशली करमलाल, दी फहार्ट वेलकम हेट इन द प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल रिएक्शन कैन इट ऑल टाइम सर्फ मना द वेबसाइट www.radiosbs.nl।

कैसा है चिनाब का, इस गजंगा दौर किशोर कुमार। En uit de film Chalti Karam Gaadi komt gezongen door Kishore Kumar weer. Ik lerki bhigi bhagi si.

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: के लिए ला रहे हैं रागा
2: इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड। क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर

इधर चला मैं उधर चला। आपने सुना फिल्म कोई मिल गया से, और अब सुनिए फिल्म मिलन तौकी से नेहा करोरे की आवाज में शर्त।

आप सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। हाउटन शहर से समस्त दुखित परिवार महादेव मिसिर और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। डोंडडाग 13 अगस्त 72 साल 72 साल की आयु में पत्नी एल्फी के पति, तीन बेटा और एक बेटी किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा के पिता, तीन पतु और एक दामाद मिरांडा, लिंसी, सकीता और राम के ससुर, एक पोतीन और दो पोता जेडा, जेनाइडो, रोशन और नेलन के आजाम। हाउटन स्केख कैंप नंबर 5 का रहने वाला चंदर दत्त महादेव मिसिर के मृत्यु हो गए है, जो सूरीनाम पारामारिबो अबेनी स्ट्रैट नंबर 3 के निवासी था। Arti vrijdag 21 augustus, 's middags vanaf 4 uur, crematorium Daalwijk in de grote aula Florida Dreef nummer 7, Utrecht Overvecht, Shaharme, da kriya kiya jayega. सुन वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानी भूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है। सुन वालों, यहाँ से रेडियो SBS का प्रोग्राम में एक शोक समाचार सुनने के लिए आप ध्यान दीजिए। बृहस्पतिवार 13 तारीख अगस्त, डोंडडाग 13 अगस्त 72 साल 72 साल की आयु में हाउटन स्केख कैंप नंबर 5 का रहने वाला चंदरदत्त महादेव मिसिर के मृत्यु हो गए है, जो सूरीनाम पारामारिबो अबेनी स्ट्रैट नंबर 3 के निवासी था। अर्थी फ्राइडाग 21 अगस्त स्मिदाग्स फना 4 यूर क्रेमेटोरियम डालवैक ग्रोते औला में फ्लोरिडा ड्राइव नंबर 7 यूट्रेख्ट ओवरवेक्ट में दाह क्रिया किया जाएगा। पत्नी एल्फी अपने पति, तीन बेटा और एक बेटी किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा अपने पिता, तीन पतु और एक दामाद मिरांडा, लिंसी, सकीता और राम अपने ससुर

एक पोटीन और दो पोता जेडा जेनाइरो रोशन और नेलन अपने आजा को बहुत याद करते हुए और भगवान से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये गाना बस पेश कर रहे हैं।

तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया। इसके साथ तो श्रेया घोषाल एंड फरहान सईद दिल लीजिए क्वाम आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड। गाँव द फेदर में कितनी बातें याद आती है द फिल्म लक्ष्य।

सैलरू सैलरे, क्या बोला फिर बोला रे, इसे फिल्म शाहरुख खान है, ऐश्वर्या राय साहब में चंद्रचूर सिंह. De film Ghatkom Dag gezongen door Udit Narayan, Elke Yachnik, Sonu Nigam en Jasminder Narula. Jhumka Chandida, Chandida, Jhumka Chandida.

0: uur reclame, het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आप अपना टिकट
2: जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है इस आर द फिल्म अजनबी एंड आर द फिल्म दबंग 3 कम खसों तो जावेद अली नैना लड़े।

अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आपने सुना सुन मितवा। फिल्म का नाम है लगान। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म गदर से। उदित नारायण की आवाज में आप सुनिए उर्जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।

फिल्म मेड इन चाइना से आपने सुना नेहा कक्कड़ की आवाज में ओढ़नी, और अब आप सुनिए सोनू निगम और अलका याचिक की आवाज में फिल्म रेफ्यूजी से। ये फिल्म पहला फिल्म है अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। ऐसा लगता है जो ना हुआ है होने को है।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।